0: जुल्फो रेडियो 102.1 MHz।
1: लो आयो है क्वालिटी में नंबर 1 दा मस्त सबै भन्दा का
2: ओ प्रकाश।

ऐसी पड़ेगी तुझे तो करती है ऐसी कैसी मैंने ही बंदा जो देखा तुझे सपनों में अच्छे से तो देख जो आगे आप बने ले आगे आप

अजीब हो, प्रकाश तो के यो धरती अपराधी हर को मात्रे आश्रय स्थल हो रहा। यदि यो धरती लाई दुष्ट हर को पंजा बढ़ता मुक्त करने चाहिए, अपराध होइना, अपराधी होने पर चाहिए निशाना, हमरो निशाना।

खुराक जी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अल्लाह को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

भी है ऐसी बढ़ेगी तुझे तो करती है ऐसी कैसी वो मैं नहीं बनता जो देखा तुम्हें सपनों में अच्छे से तो देख जो आगे आगे बने मेरे आगे आगे नहीं है।

0: उठना जे नग तेरा बन लूंगा नग नब उठना जे नग तेरा बन लूंगा नग नब मैं कबूतर फसिया के होर को फसे बिना हाय फसे बिना फसे बिना हाय फसे बिना
1: सनो जनक तेरा बन लूंगा नग नब उठना जनक तेरा बन लूंगा नग नब उठना जनक तेरा बन लूंगा

0: सच सच बताओ, उस दिन गन अपने सर पर क्यों रखी?
1: पता नहीं, सिक्स सेंस, इंट्यूशन।
2: मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। आई बिलीव इन यू।

तेरा असम दाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है। अरे शादी